0: ಹೆಂಗ್ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಬಂಕಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕು, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರು. ನಾಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 350-400 ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸುಮಾರು 4:30 ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೋರು ನಮಗೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ₹500 ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸು.
1: There's a cap imposed of only one refill per day in Bengaluru, and when pumps run out, drivers are turned away. Shiv now struggles to make ends meet.
0: ನಾವು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಓದ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೇ ಮಗನ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಆಚೆ ಕಡೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನು ಆಟೋ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಸೇಟು ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 150-200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸುತ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಏನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಬರೀ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು? ಜೀವನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ದುಡ್ದು ಅವತ್ತೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದುಡಿದ್ರೇ ಕಾಸು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ ಆಗೋಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನ ಕೊಡಿ ಅಂದರು. ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು LPG ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ.
1: Industries aren't faring any better. India ranks 12th globally in natural gas consumption, using roughly 2.2 trillion cubic feet. Its disruption is severely felt in Firozabad, a major hub of traditional small-scale manufacturing. The city produces 70% of India's total glass output, earning it the title of the Glass City of India. They use a mix of piped natural gas, PNG, and liquefied petroleum gas, LPG, to fire clay furnaces, both of which are in short supply.
2: करीब 100 साल से यहाँ परिवार में मैगनीज का काम हो रहा है और इन चूहियों को शुरुआत में जो शुरुआत हुई है ये इसकी फर्नेस जो होती हैं पहले कोले चलती थी परंतु कोले चलने के बाद जब ये TTZ एरिया बनाया गया ताजमहल को सेव करने के लिए तो TTZ एरिया बनाया गया. इस TTZ एरिया में ताजमहल के सराउंडिंग 70 किलोमीटर कोई भी फ्यूल यूज नहीं होता ग्रीन गैस के अलावा. तो 96 में सुप्रीम कोर्ट ने TTZ को गैस का प्रोविजन किया जिससे 2000 में ये गैस यहाँ पर आई. देखिए जब तक ये बार खत्म नहीं होता तो जब तक गैस का सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में नहीं आ सकती, क्योंकि जितने ये अपने देश हैं जहाँ लड़ाई चल रही है वहीं से गैस आती है. कि क्या सब लोग देख रहे हैं कुछ करते हैं, बगैर गैस के हमारी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी. फरोजाबाद में करीब 2 से 8 फैक्ट्रियां हैं जो टोटल डिपेंड गैस के ऊपर है. लेकिन जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है हिंदुस्तान में जो गैस आती है वो कतर से ईरान इधर से आती है. इनके युद्ध शुरू होने से गैस का आना कम हुआ है. तो हम लोगों को जो आवंटन था DCQ पर डे का मिलता था हमको, उसका 20% उन्होंने कट लगा दिया है. इट मीन्स 20% हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, 20% लेबर बेकार हो गई.
1: गैस शॉर्टेजेस हैव लेड टू आइडल फर्नेसेस अक्रॉस द इंडस्ट्री. आउटपुट हैज रिड्यूस्ड बाय नियरली 40%, लीविंग मेनी वर्कर्स विदाउट जॉब्स.
2: गिलास बेंगल की जो फैक्ट्रियाँ हैं इसमें जो है एक फैक्ट्री में 3 से डेली काम करते हैं पर डे, परंतु इसके जो प्रोडक्शन होता है इसके डेकोरेशन और होता है उसमें कम से कम 4 गुण एम्प्लॉयमेंट और होता है. और एक फैक्ट्री से लगभग 2000 एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति इतनी कम पैसे में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती. ये सरोली खासियत यहाँ पर है. हमको उम्मीद है कि युद्ध बंद हो जाएगा तो गैस की आपूर्ति फिर से दोबारा शुरू हो जाएगी, जिससे पूरा एम्प्लॉयमेंट हम दे सकेंगे और ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो गैस पूरा मिल जाए, इंडस्ट्री चले, एम्प्लॉयमेंट मिले, इसमें ही हमारी और देश की तरक्की.
1: India is the world's third largest energy consumer. The energy squeeze extends everywhere. Across India, authorities have introduced anti-hoarding measures, including a 200-litre cap on diesel purchases at fuel pumps to prevent artificial shortages and price hikes. The crisis underscores India's dependence on fossil fuels, which still meets around 80% of its energy needs.
3: India is the hungriest market for energy, and you name the source of energy and India wants it. India needs it. We consume roughly 5.8 million barrels of oil every day. And bulk of that, roughly 5.2 million barrels, is imported. We also have 700 million Indians who are still living below energy poverty line. The backbone of India's energy security, energy prosperity, that is fossil fuel. India is urbanizing very, very fast. The growth of India, the story of India, is still driven by fossil fuel. What we have witnessed the last 7 to 10 years, the expansion of LPG in a very big way, probably the fastest growing LPG market in the world. And today we have roughly 340 million LPG connections across the country. As part of the government initiative, the government decided that every single household must have access to cooking gas. And so this scheme was heavily subsidized, heavily campaigned by the government. Bulk of this LPG before the Persian Gulf War was coming from countries like Qatar. In the overnight, the country was faced with a very difficult situation. The real challenge today is economic, is the, basically because the prices have gone up. And our economy was not prepared for it. Consumers was not prepared for it. The consumers can feel the heat in terms of both price and also very often the supply.
1: Restaurants, factories and hotels that are facing gas shortages have left a trail of unemployment across the country. Estimates suggest that more than 10 million Indians may lose their jobs temporarily due to gas supply disruptions. Migrant workers in urban centres are left with little choice but to return to their villages. 30-year-old
4: India's National Stock Exchange is gearing up for its long-awaited stock market debut, targeting a valuation of $46 billion U.S. dollars. It could become one of the country's biggest ever listings. On your next Asia First, we look at the blockbuster offering taking shape as India's IPO market regains momentum after a sluggish start to the year.
5: China wants more marriages and births, but this push is fueling debate over gender roles.
6: 男主外女主内这种理想一直都没有改变。如果说结婚要让我放弃我现在的生活模式的话，其实我就是真的不太想结。What's
5: behind the growing divide between what Chinese women and men want?
6: 社会上对男性的要求是过高的，对于女生的要求是几乎没有的。但凡站到女性站出来讲话这个点，她就会觉得你是一个女权。Insight
5: Thursday on CNA.
7: This week on Singapore Hour. Planning a trip to Singapore? Step into these heritage hotels for a stay like no other.
8: I feel like I stepped into 100 years ago.
9: Quite cool, huh?
7: And stop over at this Insta-worthy neighborhood where tradition thrives and subcultures find their stage.
10: Kampung Glam represents a very different side that you don't really get to experience in Singapore.
7: Your Insider's Guide on Singapore Hour, Friday on CNA.
11: We're here to find love.
12: 8 singles looking for love.
13: Game on.
14: Game on.
12: But there's just one catch.
15: You've brought the one person that knows you best.
12: Their love life is in the hands of their trusted wingman.
15: Your wingman will go head to head in a series of challenges. Win a challenge, you score a date for your single.
16: I think she's actually enjoying it.
17: It was more of like a friend's conversation.
12: What could possibly go wrong?
16: They deserve happiness.
18: Girl, you gotta fix yourself.
19: Really? Right next to me?
20: I literally wanna throw up right now.
12: Catch Wingman, a brand new reality dating series. Available on MeWatch and Mediacorp Entertainment on YouTube from Thursday, 10th September. Brought to you by Coffee Meets Bagel, Date for Something Real, and the following partners. March
1: 2026. LPG and LNG shipments from the Gulf to India have been disrupted by the blockade of the Strait of Hormuz. The disruption has triggered an energy crunch, with long queues for cooking gas cylinders across the country. But in one rural setting, a quiet energy revolution is underway. Housewives like 32-year-old Mitlesh Yadav are making a transition to renewable energy.
6: जब ये था कि पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे और LPG से तो हम जैसे धुआं होता था परेशानी बनती थी हमें टाइम ज्यादा लगता था तो अब हम इस पे बनाते हैं तो अपने कभी भी कुछ भी काम करते हैं मतलब गैस बंद करी अपना काम कर लिया और चूल्हे का काम ये था कि परमानेंट पहले चूल्हे का ही खत्म करना है गैस की मतलब LPG की ये दिक्कत थी कि कभी सिलेंडर खत्म हो गया तो फिर हमें चूल्हे पे खाना बनाना है अब इस मतलब जब से ये गैस लगी है ना तब से हमें कोई परेशानी नहीं है तब से हम कंटिन्यू इसी पे खाना बनाते हैं टाइम टू टाइम मतलब LPG से तो कम ही लगते हैं LPG से तो जैसे कि एक सिलेंडर हमारा 20 दिन चलता है अब हमें सिलेंडर भरवाने की तो टेंशन है ही नहीं
1: Switching to the biogas system was her husband Arjun Yadav's idea.
9: सुबह को डेली गोबर उठा के इसमें इकट्ठा करके और उसको पानी के द्वारा मिक्स करते हैं घोल के वो उसके बाद इस डाइजेस्टर में जाता इसे हटा देते हैं इस तरह से अपने आप ही डाइजेस्टर में चला जाएगा ये इसका डाइजेस्टर है इसमें जो डाइजेस्ट होता इसमें डाइजेस्ट होने के बाद उसकी मीथेन गैस जो बनती है बायोगैस वो इस
5: China wants more marriages and births, but this push is fueling debate over gender roles.
13: 男主外女主内这种理想一直都没有改变。如果说结婚要让我放弃我现在的生活模式的话，其实我就是真的不太想结。What's
5: behind the growing divide between what Chinese women and men want?
14: 社会上对男性的要求是过高的，对于女生的要求是几乎没有的。但凡沾到女性站出来讲话这个点，她就会觉得你是一个女权。Insight
5: Thursday on CNA.
21: Every day, the financial world goes through dramatic rises and falls. We'll track the biggest market movers and show you where the opportunities lie. Get the experts' take on the performance of key indexes, plus all the analysis to help you understand forces driving global economies. Asia Business on Singapore Tonight. Weeknights on CNA. This segment is brought to you by StarHub. CNA 938, news you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world. And
22: AI is changing the rules of business. The question is, who is keeping up? And what does it take to make it work? Shaping Tomorrow, an AI story.

0: Pakistan that have been left in the dark. Chronic power cuts, coupled with rising electricity bills, has spilled into anger on the streets. Today's rally is organised by the Lahore Rickshaw Union. Liquefied natural gas from the Middle East that contributes a fifth of Pakistan's energy mix is disrupted. Coupled with a dramatic surge in summer electricity demand, Pakistanis are facing power cuts on an average of 7 hours per day. When power plants cannot produce electricity to match demand, load shedding or power cuts are implemented by the government to ration supply.
1: Petrol mehanga kar diya gaya, load shedding shuru kar di gayi. बिजली आती है तो गैस चली जाती है और फिर इस आवाम पे कि जिनकी दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाती हैं उन लोगों को टैक्सेस की यलगार कर दी गई है लोगों का जीना महाल हो चुका लोग इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं कि लोग इस हुकूमत के खिलाफ निकले
2: पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा वापस लें लोड शेडिंग खत्म करें ताकि आवाम को सहूलियत मिले ताकि हम मिलकर दुनिया को एक मजबूत पैगाम दे सकें ये लाहौर में आज ये पहला मुजाहरा है तो अगले चंद दिनों के बाद पंजाब के बाकी ज़िला के अंदर भी इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और जब तक हम आवाम की आवाज़ और आवाम के मुतालबे दोनों पूरे ज़ोर अंदाज से नहीं रख पाएंगे ये सिलसिला जारी रहेगा
0: Rising LNG, diesel and furnace oil prices add to the woes. Per unit electricity prices have also shot up by 155% over the last 3 years. Power outages have cost Pakistan's economy more than $4 billion annually. Small and medium enterprises are particularly impacted due to their small profit margins.
3: ये भी रिसीव इससे कह लो गिनती करके
4: ठीक है
3: हैंगिंग लूप नहीं लगाया इसको
4: लगवा दो
5: मेरा नाम सैयद शुएब अली जाफरी है और मेरा एक स्टिचिंग यूनिट है मैं लोकल क्रीम ब्लॉक मार्केट का और कुछ ब्रांड्स हैं उनका साथ काम करता हूँ
3: यार इसको सही तरह सेट कर लिया था आपने
6: ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ
7: ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੈਸੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ
6: ਇਹ 3 ਘੰਟੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ 3 ਘੰਟੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
7: ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ
8: India's National Stock Exchange is gearing up for its long-awaited stock market debut, targeting a valuation of $46 billion. It could become one of the country's biggest ever listings. On your next Asia First, we look at the blockbuster offering taking shape as India's IPO market regains momentum after a sluggish start to the year.
9: China wants more marriages and births, but this push is fueling debate over gender roles.
10: 男主外女主内这种理想一直都没有改变。如果说结婚要让我放弃我现在的生活模式的话，其实我就是真的不太想结。What's
9: behind the growing divide between what Chinese women and men want?
11: 社会上对男性的要求是过高的，对于女生的要求是几乎没有的。但凡站到女性站出来讲话这个点，她就会觉得你是一个女权。Insight
9: Thursday on CNA.
12: The new Premier League season starts here on StarHub's Hub Premier Channels via MeWatch. The beautiful game is back. Every goal, every rivalry, every unforgettable moment, live as it happens. Pick the plan that suits your needs best. Follow your favorite clubs. Celebrate every win and never miss a moment. Subscribe to StarHub Premier Plus via MeWatch today. No contract, instant activation. Visit mewatch.sg/subscribe.
13: This week on Singapore Hour. Planning a trip to Singapore? Step into these heritage hotels for a stay like no other.
14: Like I stepped into 100 years ago.
15: Quite cool, huh?
13: And stop over at this Insta-worthy neighborhood where tradition thrives and subcultures find their stage.
16: Kampung Glam represents a very different side that you don't really get to experience in Singapore.
13: Your Insider's Guide on Singapore Hour, Friday on CNA.